0: रेडियो हो।
1: ए लाहोरे दाई
2: के हो कांची?
1: लाहोरे को फैशन कसो रे?
2: आ तस्ता जावा
1: बाबे कस्तो गम क्यों को हो?
2: लो भनु त
1: लो
2: मादले दाई गम काउनु होस्ता।

छी कस्तो रह बिना के न हो गम के को किस्तो सुंदा फुरंग भई लहरे ढल के को लेकिन साले क्या है बंदे चुरुट हिरसल के को केना भूल चल रे दाई लूट।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,